0: पुष्टि अदान पुष्टि कर देने काम भगत श्रमौर श्री नाम देव किंतु अन्ना पुरुषो काणा दोहा से ज्ञानी ज्ञाना। और इतनी गल भी स्पष्ट है कि नामदेव हिंदू घराने का है, इतनी गल भी स्पष्ट है कि नामदेव बचपन के छोटी उम्र के श्री कृष्ण का पुजारी रहा, बाप के ब्रह्म का पुजारी होया, व्यापक प्रभु परमात्मा का पुजारी होया। लेकिन कहना हिंदू अन्ना अंधा है, सच में वेखण की समर्था ही नहीं है, सच ही है। और यदा सबूत हिंदुओं ने दिता जेडे अखबार के एडिटर ने, कलम के धनी ने, जबान के धनी ने, धन के धनी ने, पैसों के धनी ने, व्यापार के धनी ने, उसको जबान जब झूठ बोलन लगे तो बार बार नामदेव की पंक्ति पेटे आई, हिंदू अन्ना तो तुरकु काणा, तुरक अंधा नहीं काणा है। सच में वेखदा चलो एक नजर न देख रहा है, एक अख नाल वेखदा पर वेखदा तो है, किसी हद तक तो साथ देंदा है, किसी हद तक तो सच में वेखदा है, पर यह तो सच में बिल्कुल वेखदा ही नहीं, ये सच के नेड़े ही नहीं जाता। और यह बोल ने नामदेव बिल्कुल अंधा हद हो गई। दो साल तो जड़िया मंगा तो दो साल तो साढ़े कौमी लीडर जो कहते रहे वो देख एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कि हिंदू सिख झगड़ा है, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं आया। लेकिन शोर मचाया रेडियो ने, टीवी ने, टीवी का नाम रखा इन्होंने हिंदू एक दूरदर्शन। मैंने तो दूरदर्शन नहीं दिखाई देता, सरकार दर्शन है, दूरदर्शन नहीं। तो रेडियो का नाम रखा इन्होंने आकाशवाणी, समय समय झूठ बाणी है, कोई आकाशवाणी नहीं। हूं ए ना कहना चाहिए झूठ बाणी है, सरकार दर्शन है, तो कोई दूरदर्शन नहीं, तो कोई आकाशवाणी नहीं। और इतनी वड्डी जिहड़ी गलत बयानी है सत्ताधारियों ने, इतनी भी सोचनी नहीं आई। बीसवीं सदी का युग है, लोग सियाने हो गए हैं, सोचते हैं, समझते हैं। उस जमाने की गल पे करते जब मनुख जंगलों के रेंदे सन तो मनुखों जंगली आख्या जाता है, जंगल के जमाने की गल करते इन्ना झूठ, इस झूठ में किसने मनना है, किसने कबूल करना है। तो घूमद फिरद बार मैं अनेक इस ढंग के कुछ वीर मिले, हिंदुओं का तल्लुक रखते सन, कहने लगे गल सू समझ आ रही है, आ रही है, सच हौले हौले दिखाई दे रहा है। मैं तो ठीक है, शुक्र है थोड़िया धुंधलिया अखों कुछ थोड़ी थोड़ी रोशनी आन लगी, सानू सच दिखाई देन लग पाया, सानू जो असलियत का बोध जो है आन लग पाया। वरना आज काल तो ऐसा देखने दे चाहे आज काल तो मुराद गुरु नानक देव जी महाराज तो कि मुखालफत आरंभ
1: हिंदू वन्ना तुरकू काणा दोहा ते ज्ञानी सियाणा, जिदे कोल ज्ञान है सच दा ईश्वर दा सच तन वास्तविक सियाणा ते होइए नामदेव जी महाराज कहिंदे ने। बाकी ते पत्थर नू भगवान मन लेगा, सच नू भगवान नहीं मनदा, पत्थर नू मत्था टेक लेगा, सच नू मत्था नहीं टेकदा, सच्चाई नू मत्था नहीं टेकदा। सच्चाई की है इहदे बारे सोचने की कोशिश नहीं करता, और सच के हक में नारा बुलंद करने की भी जो है कोशिश नहीं करता। और खास करके पंजाब के समय करने कुछ माशा अखबार ने तो इस ढंग का झूठ बोलिया, कहना ही पाया कि रोम रोम के झूठ इतना समा गया है कि हुण सच बयान करना इन बहुत औखा है। और इस झूठ का ही पसारा समुचे देश में आता रहा, कि साड़ी एक गलत तस्वीर जो बड़े सोहने ढंग 500 साल गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तामीर की थी, बनाई थी, उसारी थी, उन्होंने इन्होंने दावे किया झूठ बोल बोल के, झूठ लिख लिख के। सिख का सोहना तस्वर, सिंह की सोहनी ये मूर्ति, ये परोपकारी, ये दयालु, ये उसारू रुचिया का मारक, ये वीर रस का जो है धनी, यदि जी तस्वीर धुंधली पेश की थी, ये डाकू है, ये जालम है, ये जाबर है। इस ढंग का गलत रूप पेश किया। जवाब साढ़े को कुछ नहीं, ना कोई अखबार, ना रेडियो, ना टीवी, तो गलत तस्वीर बनती गई, बनती गई। और क्षमा करनी 500 साल का साडा सुनहरी इतिहास इन्हों दो साल धुआंधार झूठे प्रचार ने दावे किया। मैं अज थोड़े चरणों च बेनती करा कि दो साल इन्होंने झूठ बोल के जोड़ा सा

शरीर नु तो लेन नाल मनते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

कि निम मिठास नहीं देगी, इंदिया टानिया विच्चो मैनू शहद का रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला है, ये तेरे हिरदे विच मुगलत है, तेरा घोल के पाया होया शहद निम का सुभाव नहीं बदल सकता, उनके सुभाव विच कुड़त्ते ने।

आण दिन नाम वखाणी उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी।

0: ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਸਨੇ ਚੌਲੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਜਪੀਏ ਜਿਤਨਾ ਵੰਡੀਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ, ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਦੌਲਤ ਸਰਮਾਇਆ ਇਮਾਂ ਬਵਦ, ਹਰ ਗਦਾ ਅਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਗਤਾਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੌਲਤ ਸਰਮਾਇਆ ਇਮਾਂ ਬਵਦ, ਹਰ ਗਦਾ ਅਜ ਯਾਦ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਵਦ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾਏ ਦਤ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਵਰਨਾ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮੰਦਗੀ। ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਜਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਮਾਂਜਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਤਾਲੀਕ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤਾਲੀਕ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤਾਲੀਕ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਤਾਲੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ, ਅਤਾਲੀਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀਅਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਥ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਐਸਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਮੁਰਾਦ ਆਇਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੁੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਨੱਸ ਜਾਓ, ਵੱਜ ਜਾਓ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲਓ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਭੱਜ ਜਾਓ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ तय करके पहुंचे। सतगुरु के दरबार में हाजरी भरी, मत्था टेकया ते कहन लगे, महाराज मैं आप जी दे कोल रहना, इत्थे ही रहना, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना। हां महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नूं कहन लगे, महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू। ते सतगुरु कहन लगे, की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकलते ने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलते ने, फिलसफा निकलता है, ज्ञान निकलता है, विचार निकलते हैं, मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम का धनी हाँ, दिमाग का धनी हाँ, जबान का धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ, ऐसा मैनु सारे कहते हैं। सतगुरु कहन लगे, तू रोशन जमीर है। हां रोशन जमीर हाँ, दिमाग का धनी है, धनी हाँ, इत्थे रहना भी है, हां महाराज रहना भी है, ते सेवा भी करनी है, हां महाराज सेवा भी करनी है। अच्छा तू बस लंगर दे पांडे ही मांझिया कर, बाकी छड़। कंजन दिल नंद लाल दा बड़ा टूटिया, हद हो गई, मैं दस भी दिता है, शायर हां, अतालीक हां, रोशन जमीर हां, रोशन दिमाग हां, कोई लिखण पढ़न की सेवा दें दे, पढ़ाण की सेवा दें दे, लंगर दे पांडे मांझ कदी मांझे नहीं सन, दीवान दे लड़के सन, ते आप दीवानगी भी करते रहे, फिर अतालेक बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबिया ते पिता रहा, ते आप रहे, कदी मांझे नहीं सन। पर सतगुर ने कहा जे थे रहना ही तो फिर पांडे ही मांझिया कर। रोज रोज लंगर दे पांडे मांझदिया और रंग रतड़िया की महफिल च रेंद्या हो, रंगे हुए मनुखां की महफिल च रेंद्या हो, मन की कालक हंकार मिटदा गया, मिटदा गया, मिटदा गया। सही मैंने पांडे मांझना मन मांझना हो गया, श्रद्धा नाल करे मनुख ऐसा हो जाता। फिर माहौल ऐसा सी रंग रतड़िया की महफिल, अभ्यासियां दी महफिल, शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया, भई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी, इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहनशाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुरु ने कदर नहीं की थी। शरीक जद पहुंचे ते नंद लाल नूं समझांदे ने, और रब दी नेत कोई रब नहीं करिश्मे करने हुंदे ने, जद शरीक पहुंचे सन उदों भी नंद लाल भांडे ही मांजदे पए सन, काले हथ भिजे हुए कपड़े देख के शरीकां ने समझाया, कोई गल नहीं, कोई खतरा नहीं, हुण तुसीं साडे नाल मुल्तान चलो, गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ी कदर नहीं की थी, भांडे मांजण ते रखे। लंबी चौड़ी जद नसी तां करन लग पैने, तो हुण नंद लाल दे बोल सुनना, नंद लाल अपने शरीकां नूं की कहिंदे ने, नसीहा ता चंद गोही, नसीहत करन वाले हो नसीहत ना करो, उपदेश देण वाले हो मैनू उपदेश ना दो, नसीहा ता चंद गोई। कहिंदे ने शरीक समझा रहे सन, नंद लाल जवाब पे देंदे सन, पर एक पासे खड़े होके सारी गुफ्तगु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुन ली, सुने पहुंच गए। ते हुण शरीकां दे सामने जो सतगुरु कहिंदे ने नंद लाल नूं, असी तैनू कोई चंगी सेवा नहीं दे सके, तू कलम दा धने दिमाग दा धने रोशन जमीर असी तेनू कुछ नहीं दे सके तेनू ते बहुत कुछ देना चाहिदा सी शरीकां दे सामने सतगुर इंज कहिंदे ने असी तेनू कुछ नहीं दे सके ते हुण नंद लाल जो कुछ कहिंदे ने ये सुन लेना मैं आखिरी पंक्तियां छेती छेती समाप्त करना समा हो गया नंद लाल जो हाथ जोड़ के बेनती कर रहे ये कीमती पंक्तियां ने बड़ी कीमती पंक्तियां ने दीवाने गोया दिया गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस हवाए सल्तनतो व जौके कज को लाही नेस ए मेरे बादशाह कोई भूल के भी थोड़ी गली चो लंघ जाए ना वो दो जहाना दी बादशाहत नू ठुकरा देंदा है ते जिहड़ा लंघ जाए वो इतना माला माल हो जांदा है मैं ते बुआ मल के बैठा होया मैं ते दर ते बैठा होया मैनू केड़ी चीज दी कमी जिहड़ा लंघ जाए ते माला माल हो जांदा है ते जिहड़ा हर वक्त कदमां दे चरेंदा पिया है उहदे कोल केड़ी चीज दी कमी गदाए कुए तोरा तेरी गली दा जिहड़ा मंगता है वह भी बादशाह बन जाता है तेरी जी गली दा जिहड़ा भिखारी है वह भी शहनशाहां दा शहनशाह बन जाता है गदा है गदा कहिंदे ने भिखारी नूं कुए कहिंदे ने गली नूं गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस हवाए सल्तनत वा जौके कज को लाही नेस ऐ मेरे बादशाह भुल के कोई मंगता थोड़ी गली चो लंघ जाए दो जहाना दी बाहत शाहत नू ठुकरा देंदा है इतना माला माल हो जांदा है ते महाराज फिर मैनू की कमी है मैं ते दर मल के बैठा है मैं ते इस जगह बैठा है कहिंदे ने कृत कोल की मंगना करते कोल मंगना कृत कोल मंगता है जन्म तो लैके मरण तक मंगता ही बनया रहेगा करते कोल मंगदा है बादशाहां दा बादशाह बन जाएगा शहनशाहां दा शहनशाह हो जाएगा हुण कितना ही जगत नूं समझाओ ये गुरु कोल नहीं मंगदे बंदियां कोल ही मंगदे ये परमात्मा अगों प्रार्थना नहीं करदे अपने दुखां दे निवृत्ति दी इधर उधर रोला पांदे ने और जिहड़े आप दुखी हुंदे ने उहनां दे अगों जो है फरियादां करदे ने जोदड़ियां करदे ने सतगुरदेव जी महाराज इत्थे फरमान पए करदे ने ए प्रभु तेरे कोल जे मंगी है तेरी लात दे नाल ही रजेवां उंज रजेवां नहीं है हां जी
1: आनंद भया सुख सहज समाणे सतगुर मेल मिलाई
0: जी प्रभु तेरी लात रजा देंदी है महान बना देंदी है शहनशाहां दा शहनशाह बना देंदी है तो आनंद दी प्राप्ति हो जांदी है नौनिद नाम दी प्राप्ति हो जांदी है खेड़ा ते खुशी मुयसर हो जांदी है लोभ अंदर दा शांत हो जांदा है मिट जांदा है हां जी
1: मन नाम जाप नाम आराध आन दिन नाम वखाणी
0: हे मन तां ते तू आन दिन नाम जप नाम दे जो है ध्यान जोड़ दिन रात नाम ही जप नाम ही जप ना मंग मनुख कोल हां जी
1: उपदेश सुन साध संतन का सब चुकी कान जमाणी
0: संत जनां दा उपदेश सुन गुरु पीर पैगंबरां दी बाणी सुन ताके जमां दी मुथाजी लोकां दी मुथाजी तेरी मिट जाए बंदियां कोल मंगना तेरा मिट जाए हां जी
1: जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा ते लागे गुर की बाणी
0: जिन्हां दे उत्ते रहमत हो जांदी है कृपा हो जांदी है पुरबले संजोग आउंदे ने ओ प्रभु फिर तेरी बाणी नाल ही जुड़दे ने ते तेरे कोल ही मंगदे ने हां जी
1: कीमत कौन करै प्रभ तेरी तू सर्व जीआं दयाल
0: हे प्रभु जो तेरी दात है उहदी की कीमत ओ सीमा दे च नहीं है तेरा दित्ता होया सीमा दे च नहीं है असीम है असीम है मैं ऐसा देखे अगर कोई अनुभवी कवि है तो वह भी कह देंदा है कविता दा अंत नहीं है असीम है असीम है संगीत दा अंत नहीं है असीम है असीम है ज्ञान दा अंत नहीं है असीम है असीम है ते हे परिपूर्ण परमात्मा पदार्थां दा भी कोई अंत नहीं है, असीम ने, असीम ने, तू असीम है, तेरियां दातां भी असीम ने। हे परिपूर्ण परमात्मा कौन कीमत पावे, कौन नापे, कौन तोले, तू मनुख नूं महान बना देंदा है क्योंकि तेरी दाता असीम ने, जिन्हां दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं।
1: हां जी, सब किछ कीता तेरा वरता क्या हम बाल गोपाला।
0: हे परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरी कृत है, असी ते तेरे बच्चे हां, तू साडा पालनहारा है, पिता दी तरह है, असी तेरे बारक हां। हां जी,
1: राख लेहो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत किरपाला।
0: भावें लख गलतियां करदा है बच्चा, प्यो फिर भी कठोर नहीं आउंदा, दया दे घर विच आके बच्चे नूं गल नाल लांदा है, सारियां दातां जो है देना है। हे प्रभु तेरे बच्चे आ, सदीवी गल नाल राई रख, इस तरह साडी पालना कर जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है। हे प्रभु हर वक्त अपने चरणों नाल जोड़ी रख, हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख, ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए। इतनी सेवा प्रवान, काफी समा हो गया, बाकी विचारां कल। दूसरी बेनती है, कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनूपुर का है, जिन्हां नाल दास का बड़ा पुराना प्यार से, 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया। बड़िया खेड़ा मैं उन्हां दे नाल देखियां, उन्हां कोल देखियां, बड़े अनुभव। तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक दा दीवान कल दा कन्नूपुर कालेज सजेगा। दास दे नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने, प्रचारक आए हुए ने, कवि सज्जन ने, ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे, ते दास भी 4 to 5 उत्थे कथा जो है करेगा। सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलदा रहेगा 6-7 बजे। तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है, जिन्हां कोल समा, वैसे कल इतवार है, ते बाबा जी दी तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां। जिन्हां ने जाना वो गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां। हुण जिन्हां दा शौक होवे वो 2 बजे इत्थे पहुंचण दी कृपालता करन, बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां, वो संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां। इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना। फुल सुख दी शमा, वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। महला पंजवां, मानुख बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक ओढ़ाया। मानुख बिन बुझे व्यर्था आया, अनक साज सिगार बहो करता, ज्यों मृतक

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, कित ही काज ना आया, कार्या भरण सवारी सिज्जा, कामन थाट बनाया।

पर भुख नहीं, एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर भी लोड़ नहीं है, तुम दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर दी अधिक शक्ति है, जो शरीर देच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके। बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचनी का हिस्सा बन गया है। शरीर देश ते है, ये मन देश भी हो गया, चिंतन देश आ गया, सोचनी देश आ गया, विचारां देश आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार देश बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे हैं, उस साहित देश काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध च लिख रही है। लाजमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उना दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है, बिचारे के आजा पर औरत सवार। भावे उन्हें अपने देश की गल की थी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है, बिचारे के आजा पर औरत सवार। ये जो नावलिस्ट ने, कहानीकार ने, ये जो संत राष्ट्र ने, ये जो शायर ने, दार्शनिक ने, विचारक ने, इन्हां दे विचारां देच, इन्हां दी लेखनी देच, इन्हां दी चित्रकारी देच, इन्हां दी संत राशी देच, काम ही काम छाया है। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है, और इसे ही कहानियां शायरी दे आधार ते बनन वालियां फिल्मां काम दी प्रदर्शित तस्वीर बन गईयां। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर्स, इश्तेहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर, सब काम भी नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा तो ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया। और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गया। काम एक ऐसा जज्बा अगर विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए, तो काम ग्रसिया मनुख राम दा चिंतन नहीं कर सकता, नाम दा सिमरन नहीं कर सकता। भगत रविदास जी महाराज फरमान कर देने,

इस दौर देच, इस कामी युग देच, हम कहियत कल युग के कामी, जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नान का, जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है, कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं लैला पैदा हो रही है, कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन, उस समय इना दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके, और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप दे ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नू काबू करना औखा सी, अजोकी औलाद नू काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होके रह गया। पातशाह कहिंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण लई निकलदी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे, तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द
फारसी दा है, इहदे अर्थ ने शिकारी। पुरुष शिकारी है, इसे शिकार दी तलाश च है। इसकी खोज यही है, कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया। इतने पैसे नहीं कि थिएटर विच जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नूं वेखे। और अजे इतनी धनाडा दी महफिल विच नूं नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां विच ने, तस्वीरां विच ने, मूर्तियां विच ने, वह वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रहीआं ने। फैश नावल, जिनसियात नाल भरियां हुईआं कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होके रह गया है, वासना दा बीमार। और इसने सहजे सहजे हर माहौल नूं दूषित कीता है। इस वासना नूं प्रार्थना किवें बनाईए? प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे, कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक दे च भी कहंदे ने, अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीच समावणे। बहुत थोड़ा जिहा सुख और तुम ऐसा चंचल कर देना है, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जांदा है। बचाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने।

इसते भय तो डरदे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

करोधं कदन करुणान उपर्जते बिखयंत जीवं वसंकरोत निरतं करोत जथा मरकटे अनेक

तव संगे अधमं नरे दीन दुख भंजन दयाल प्रभु नानक सर्व जी रक्षा करो। विद्वाना ने क्रोध नू अग्न के है बड़ी प्रचंड अग्न जो मन देचों उठ के तन भी राख कर दिए महान इपरबल अग्नि। क्रोध ता थोड़ा बहुत पशु पक्षियां दिस भी देखन नु मिलता है, लेकिन क्रोध दी अग्न मनुख देच बड़ी प्रचंड है, बड़ी प्रबल है। क्रोध दैवी गुणा नु साड़ के राख कर देंदा है, स्वा कर देंदा है। क्रोध ही मनुख दे अंदर कोई गुण रह नहीं जांदा। दरअसल क्रोध उत्पत्ति दा कारण मनुख एति स्पष्ट है कि कामनावां दा वेग है, काम दा वेश है, कामना वासना दी, कामना धन दी, कामना सता दी, सता दी कामना, एक कामना अहंकार दी कामना है, धन दी कामना, एक कामना लोभ दी कामना है, वासना दी कामना, एक कामना काम वासना है। जिस तो वासना दी तृप्ति हो जाए, जो लोभ पूर्ति दे सहायक होवे, मददगार होवे, जो अहंकार नू पठे पावे, ओ मेरा प्रतीत होंदा है, उसते मोह आण लग पैंदा है, चंगा लगदा है। पर जो वासना पूर्ति दे रोक खड़ी कर देवे, लोभ पूर्ति रिच दीवार बन जाए, अहंकार सदा प्राप्ति लई रस्ते दा रोड़ा बन जाए, तो फिर उस ते क्रोध आ जाता है। क्रोध उस वक्त पैदा होता है जब वासना अतृप्त रह जाए, लोभ अतृप्त रह जाए, अहंकार अतृप्त रह जाए, और जिस दे राही महसूस होवे कि वासना अतृप्त रह गई है, लोभ अतृप्त रह गया है, अहंकार अतृप्त रह गया है, बस उसे ते प्रबल क्रोध आउंदा है, उसे नु ही चबा जान नु जी करदा है, रेजा रेजा करन नू जी करता है। पर जो मददगार होवे, सहायक होवे, वासना पूर्ति देच, धन संपदा दी पूर्ति देच, सता दी पूर्ति देच, बहुत प्यारा लगता है, मोह आ जांदा है, उसते उनू सीने नाल लाण नू जी करता है। तो क्रोध की है अतृप्त वासना, क्रोध की है अतृप्त लोभ, क्रोध की है अतृप्त अहंकार। विद्वानों का कथन है, अगर क्रोध है तो किसी होर दुश्मन की लोड़ नहीं, दुश्मनी की खान है क्रोध। दया है, प्रेम है,
तो कोई होर किसे मित्र दी लोड़ नहीं, सारी मित्रता दी खान है दया और प्रेम। क्रोधी ते देवतियां तक नू दुश्मन बना लेंदा है, प्रेमी गलियां दे कख नू भी मित्र बना लेंदा है, राक्षसां नू भी मित्र बना लेंदा है। क्रोधी महामूढ़ है, प्रेमी ज्ञानी है, सियाणा है, सूझवान है, सुचेत है। तदी ते कहने ने क्रोध पैदा ही अचेत अवस्था तो आंदा है। उर्दू दी कहावत, गुस्सा बेवकूफी से शुरू होकर पश्चाताप पे जाके खत्म हो जाता है। क्रोध अगर एक मेंबर देच, एक सदस्य देच, घर दे एक प्राणी देच पैदा हो जाए तो सारा घर महाभारत दा अखाड़ा बन जाता है। घरेलू युद्ध, घर देच कलेश। पर यही परिवार जे पूरे दा पूरा किधरे क्रोधी हो जाए तो सारे महल्ले नू महाभारत बना देंदा है। किधरे सारा महल्ला क्रोध दी अगन विच, प्रचंड अगन विच जलन लग पवे तो फिर देखण दी चाया है ए पूरा महल्ला सारे शहर नू जला के खाक करदा है, सारा शहर महाभारत बन जांदा है। इसी तरीके नाल एक मुल्क दा क्रोध किसे मुल्क प्रति जंग दा कारण बन जांदा है। और थोड़ा थोड़ा करके जब सारी दुनिया दा क्रोध यकजा होंदा है, कट्ठा होंदा है, उदों ही विश्व युद्ध होंदा है, वर्ल्ड वार हो जांदी है। एक सथल महाभारत नहीं, सारी दुनिया महाभारत बन जाती है। बड़ा भारी विनाश होता है मनुखता का। हर पासे कबरां ही कबरां, हर पासे शमशान ही शमशान। सिर्फ शहर दे एक कोने विच शमशान घाट नहीं, सारी दुनिया शमशान घाट बन जाती है। क्रोध ता ऐसी अगन है सारी मनुखता नू जला के खाक कर देंदी है। क्रोध अगन विद्वान ऐसे भी कहंदे ने और प्रत्यक्ष दिखाई भी देंदा है कि खूबसूरत फुल्लां दा बीज अत्यंत करूप ते कठोर होंदा है, पर इना कठोर और करूप बीजां नू अनुकूल धरती मिल जाए, वातावरण मिल जाए, मौसम मिल जाए तो इसे कठोरता विचों कोमलता झलकन लग पैंदी है, इसे करूपता विचों सुंदरता डुलन लग पैंदी है, उसे निर्गंध विचों चारों पासे सुगंध फैलन लग पैंदी है। कठोर से बीज लेकिन इस विचों कोमलता निकल सकती है। शक्ति है तां क्रोध है, शक्ति है तां दया है, शक्ति है तां क्रोध है, शक्ति है तां प्रेम है। तो क्रोध एक बीज दी तरह है, कुरूप सही कठोर सही लेकिन बीज है। असि देखते हां कि धार्मिक मंदिरां विच पूजा सथलां विच लोकी फुल अर्पण करदे ने, पुष्प
भेट करते हैं। अगर कोई तार्किक मनुख बारों गीटियां ते पत्थर चुक ले आवे, सतगुरां दे अगों भेट करे, किसी मंदिर दे चढ़ावे, लुखी कहणगे मूढ़ है, नादान है, ना समझ है, पागल है। पर वो तार्किक तर्क खड़ी कर दे, अगर फुल भेट हो सकते ने तो पत्थर क्यों नहीं भेट हो सकते, पुष्प चढ़ाए जा सकते ने तो एक कंकर ते गीटियां क्यों ने नजराने वजह पेश कीतियां जा सकदियां। उसकी तर्क का समाधान इंज करना पड़ेगा, पत्थर करूप है, पत्थर निर्गंध है, पत्थर कठोर है, फूल कोमल है, फूल सुगंधित है, फूल सुंदर है। सुंदरता नजराने वजों भेंट कीती जा सकती है, कोमलता सुगंध अर्पण कीती जा सकती है, कठोरता करूपता ते निर्गंध नहीं। फूल धर्म मंदरां दे देवतियां दे शिंगार बनदे ने, शोभा बनदे ने धार्मिक मंदरां दी, पर जो स्वयं फुल दी तरह हो जाए, अपने मन नूं फुल दी तरह कर देवे, परमात्मा दे कंठ दा ओहार बन जांदा है, उस दी दुनिया महान हो जांदी है, वो ते शिंगार बन जांदा है धर्म दा। जो कोमल हो गया है, सुगंधित हो गया है, और कोमल हो गया है, सुंदर हो गया है, सुगंधित हो गया है, क्रोध ही कोमल हो सकता है, क्रोध सुगंधित हो सकता है, क्रोध बहुत वड्डी सुंदरता अपने विच्चों पैदा कर सकता है, बीज है। मूर्ख इस बीज नो अपने कोल रख लेंदा है, सेना इस बीज नु गोड़दा है, बोंदा है, और बोना बस यही है, अपने मन नु प्रभु नु समर्पित करना, नाम भी जोड़ना, क्रोध नाल भरिया होया यही मन दया नाल भर जांदा है, रब्बी सुहपन नाल भर जांदा है, अत्यंत कोमलता नाल भर जांदा है। इस नु खत्म करन दा यही इलाज है, प्रभु चिंतन, प्रभु चिंतन, उस विच अपना मन जोड़ना। सार कितावली दा करता बहुत सुंदर कहिंदा है कि धर्म पैदा किवें आउंदा है, धर्म नष्ट किवें आउंदा है, आखिर धर्म धर्म देच दया आ जांदी है, धर्म देच संजम आ जांदा है, धर्म देच संतोख आ जांदा है, धर्म देच सारे दैवी गुण आ जांदे ने, शील संजम आ जांदा है। ए धर्म किस तरह पैदा होंदा है और ए धर्म किवें

धर्म का बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म का ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठता है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म का बूटा क्षमा दे आसरे से टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ये धर्म का बूटा रोज रोज वद्दा है उच्चा होंदा है उच्चा होंदा है। इस्तिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म का बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख दें दी कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छह महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनूं भस्म कर सकती है। क्रोध की छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नो नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को लियाण दा मतलब जब खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा इत्थे मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया इत्थे ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दुध पिलाण लग पई पर गाली गलोच साड़ी चल रही सी मैं क्रोध नाल उबली हुई सी। तो डॉक्टर ने कहा ऐ बीबी तू इस बच्चे नु दुध नहीं पिलाया जहर पिलाया है। जब तू क्रोध नाल उबली

करके तेरिया शरीर दिया ग्रंथिया ने जहर उगलनी शुरू की थी। उन्हां गंडा चो जहर निकली, वो खून विच पिवस्त हुई, वो दुध विच लीन हुई। तो बच्चे नू जहरीला दुध पिलाया, तेरे क्रोध करके जहरीला हो गया तेरा दुध। इसका मतलब है क्रोध जहर है और सारे शरीर नू जहरीला कर देंदा है, पर इस तो उल्ट भी हो सकता है। अगर शरीर जहर नाल भर सकता है, खून जहरीला हो सकता है, तो खून अमृतमय हो सकता है, शरीर अमृतमय हो सकता है। परम भगत श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिटना सत्तर दोए भरे अमृत सरे।

करों और चातर की मत दूर निवारों। अंधा कर देंगा जिन्हां दियां निगाहां बड़ियां लंबियां ने, जो दूर तक वेखदे ने अपने पैरां नूं भी नहीं देख सकनगे किथे खड़े आ, मैनू भेज के ते देखो। अंधा कर देंगा जो पारदर्शी ने, पार तक देखदे ने और आर भी नहीं दिखाई देगा। जो लंबियां निगाहां रखदे ने, लंबी नजर रखदे ने, दूर दृष्टा रखदे ने, ये भी नहीं देख सकने कि किथे खड़े हैं, मैनू भेज के देखो। अंध करो दृगवंतन को, श्रुतवंतन को बदरो कर डारो। जिहड़े विचारक ने, सूझवान ने, पागल करके रख देंगा, हिला देंगा उन्हां दी सोचनी नूं, हिला देंगा उन्हां दी विचार शक्ति नूं। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। धीरजवान नूं, सबरवान नूं मैं बेसबरा करके रख देंगा, जल्दबाज बना देंगा। क्रोधी बहुत जल्दबाज होता है, जल्दबाज बहुत क्रोधी होता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बड़े सुंदर वाक जफरनामे दे आपने औरंगजेब नु इंज लिखे है, जे खुश गुफ्त फिर दो सीए खुशतर जवां के जूदी बवद कारे आहिर मना। ऐ औरंगजेब कितना सुंदर लिखे है तेरे हमदीन जनाब फिरदौसी ने, ईरान दा मायानाज शायर, महान सूझवान, दूरदृष्ट। ऐ औरंगजेब चल तू मेरे बोलां तो कुछ नहीं सिखिया, ना सिखना चाहना है, कम से कम फिरदौसी नू पढ़ लेंदा, फिरदौसी दे बोल सुन लेंदा। जे खुश गुफ्त फिरदौसी है खुशतर जबां के जूदी बवद कारे आहिर मना। कितना सोना उसने लिखे है कि जल्दबाजी करना शैताना दा कम है। तुम बहुत जल्दी की थी क्रोधी, बहुत जल्दबाज आंदा है तू, इसी जल्दबाजी दे प्यो नू कैद कीता, भरावां नू कतल कीता, भैन जहां आरा नू भी जेल देच पाया। और ऐ औरंगजेब तेरी इस जल्दबाजी ते इस क्रोध ने पता नहीं कितने मासूमा दी जान ली। सरमद जैसे सूफी फकीर फिर मेरे मासूम लड़ ले, फिर त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहादत सब तेरे क्रोध दा कारनामा, सब तेरी जल्दबाजी दा कारनामा। तू रंचक मात्र भी सोचिया नहीं। पंडित गुलाब सिंह जी ठीक रखते ने, क्रोध कह रहे है सोचेगा ही नहीं मनुख, उस दे धीरज ही नहीं रहेगा, दूरदृष्टा ही नहीं रहेगी। जितना सियाणा होवेगा मूर्ख हो जाएगा। धृतवंतन को सो अधीर करो और चातर की मत दूर निवारो। हित कारज नाए पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पग धारूं।

पुकारूं। सुन ऐ मोर राजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हिरदे च अपना पैर रख देना, वो अपना विगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा दी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोर राजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होवेगा, सालां बदी जो पड़िया होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होवेगा, ये दार्शनिक होवेगा, ये फिलोसफर होवेगा, ये चातर होवेगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड देज भुला के रख देंगा, एक छिन देज भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध। झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे, मूल क्रोध है। झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे, मूल क्रोध है। ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे, विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। बिखयंत जीवं वसं करोत, नर्तं करोत जथा मर्कटे। हे क्रोध, तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीयां इच्छावां अतृप्त रह गईयां ने, जिन्हां दीयां कामनावां अतृप्त रह गईयां ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करता है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तं करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है, उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नूं नचांदा है। ऐ क्रोध, तू बंदर दी तरह उस मनुख नूं नचाना है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जाना है। अनेक सासं

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना कीजे जे का पार वसाए। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नो मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द दे च बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। एक स्वान दोए स्वानी नाल

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानके जगदीश्वरे। ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है, लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है, ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा? वह गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे। उंज ते अनंत औगुण ने, अनंत औगुण ने, पर मूल कमजोरियां मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दे च लियाया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहणे ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणां विच बदलना है। सतगुर मोह तो आरंभ करदे ने, मोह मेरा, मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनूं थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टुट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा, मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है, लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पै है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। व्यक्ति जी वस्तु टुट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है, लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध ते टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता ते टूटेगा, संबंध ते टूटेगा। बस इसे टूटण का दुख है, इसे टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आता है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है, जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है। बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन 5-6 वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गए। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
धीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंघ गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर ते दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसते गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघ दे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मां नु बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो हो रहा है। इस बच्चे ने उसी बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेखया, प्यो ने वेखया, भुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विचते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौ गया, हमेशा दी नींद सौ गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗੜ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ।

मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा, मेरी धन संपदा। तो जो मेरा नहीं उस नाल मोह नहीं। दरअसल मनुख ने मेरे दी मोर मिथ्या ते लाई है। ए मेरे दी मोर सच ते नहीं ला सकया। वाकई जिसनों कह सकता है कि प्रभु मेरा है, ये परमात्मा मेरा है, और वो मेरा ऐसा है कि सारी कायनात भी उसने वाखे मेरा है मेरा है, तामी वो बददा नहीं घटदा नहीं, सब दे हिस्से यकसां आंदा है, इको जी आंदा है। लेकिन मोह एक ऐसा पर्दा, मेरा एक ऐसा अज्ञान, जिस कारण करके ये मिथ्या नो ते गल नाल लांदा है, सच तो कोसों दूर भजदा है, और इस तरह जिंदगी मोह दे दलदल विच फस के रह जांदी है, मोह दे खूह विच डुब के रह जांदी है। और ए मेरे दा विस्तार सिर्फ मनुखां तक ही नहीं कि मेरा भरा, मेरी मां, मेरा पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अगां चल के ए मोह संपदा ते हो जांदा है, धन ते हो जांदा है। मौजूदा दौर विच कुछ मनुखां ते विश्वास घटदा जा रहा है, मनुख दी मनुख नाल पकड़ घटती जा रही है, मनुख सियाणा हुंदा जा रहा है, चंचल हुंदा जा रहा है, बौद्धिक हुंदा जा रहा है, और जितना बौद्धिक हुंदा जा रहा है मनुख दी पकड़ मनुख नाल घट के मनुख दी पकड़ धन संपदा नाल ज्यादा हो गई है। पुत्र धोखा दे सकता है, भरा मुंह फेर सकता है, लेकिन धन धोखा नहीं दे सकता, मुंह नहीं फेर सकता। जैसे इसनु वरतांगे वरत सकते हैं, पर जैसे पुत्र नु वरतना चाहिए नहीं वरत सकते। जैसे पति नु आखिए या पत्नी नु कुछ कहिए, लाजमी नहीं कि दोवे एक दूसरे दी मनन। किसी थां ते नौकर भी इनकारी हो सकता है। तो इस सदी विच मनुख दा मोह धन नाल बहुत ज्यादा हो गया, पदार्थां नाल ज्यादा हो गया, और सहजे सहजे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, पदार्थ दी खातर, धन दी खातर, संपदा दी खातर भरा कुर्बान किया जा सकता है, मां बाप छोड़े जा सकते हैं, पुत्र तो भी मुंह मोड़िया जा सकता है, और पत्नी ते पति दे विचकार दियां तलखियां पैदा हो सकती हैं, खलीज पैदा हो सकती है, दीवारां खड़ियां हो सकती हैं, और जद भी इन्हां रिश्तियां विच दराड़ देखो, दीवार देखो, दूरियां देखो, तो बहुगिणती विच कारण धन होवेगा, धन दी पकड़ ज्यादा, धन नाल मोह ज्यादा, और इतना ज्यादा इस देश देखते हैं धन की पूजा होती है। सब तो वड्डा त्योहार दिवाली, ते दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन, धन की पूजा। कोई इस ढंग नाल अपने मां की पूजा नहीं करता, पिता की पूजा नहीं करता, पुत्रां की पूजा नहीं करता, पत्नी की पूजा नहीं करता, पति की पूजा नहीं करती पत्नी, लेकिन सारे मिलके धन की पूजा। तो अचेतन मन विच धन की पकड़ बहुत ज्यादा हो गई, और मूल कारण धन जैसा वर्ती है धन ना नहीं करता, धन जिथे रखी है, और जो इसका इस्तेमाल करिए धन कोई हील हुज्जत नहीं करता। इस सदी रेजते हैं ये पगड़ शिखर पाते हैं।

अत बलना बहु मर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट दे पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मंड ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च लै लिया, तू अपनी पकड़ च लै लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पे, तां भी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा कुखारी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखण वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारियां दा मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए? फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੰਮਦਾ ਰੱਖਦਾ ਵੇਖਦਾ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहन लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखे खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदिया वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद दे च एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है इसकी गोद दिच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां जहां बना मैं ले आई हूं। अकबर ने चादर एक पासे की थी, चीथड़िया दे च लिपटिया होया एक करूप और महिला बच्चा खादमा दी गोद दिच है। हैरान होके अकबर कहिंदा है, ए बच्चा किसदा बच्चा है? जहां बना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां बना इस बच्चे तो मैनु ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां बना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहिंदे ने नौकराणी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया मैं मोह दी नजर नाल सलीम नूं वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नूं वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकराणी नूं अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनूं सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी आलम फाजला नूं अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चाह गई, पकड़ दे चाह गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देख रहे हैं, मनुख नूं अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनूं चंगे नहीं लगते। अपना करोड़ बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी दा सुंदर बच्चा भी क्रूप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु की शरण प्रकट प्रभु का चिंतन कर रहे नाम दे गीत गांद्या गांद्या मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जाता है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चो भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी तो सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते वो परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा है सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साडे देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखे सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासिक वार्ता है एक ऋषि ने जब यह ना सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसे है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखे जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी एड एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ देश दिस जाए पेड़ एक साखा घनी पंखी बैठे आए ओ फुटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष की तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वसों के संयोग वसों के इना परिवारों दिया टहणिया ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नु चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, लेकिन रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गया, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उन्हों तो वेखी है गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सम्मान दिता बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा दसोरा राज ऋषि, संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

वसीते काफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है, एक आउंदा है एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है एक टूट रहा है। ये एक प्रभु की लीला समुची सरां देच ये आवागमन बने होया है और इत्थे सारे ही मुसाफर ने, असी भी मुसाफर हां, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गल ते नहीं, पर मैनू दुख है अफसोस है, ए ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया? इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? तपिया तप क्यों छाड़ियो? यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी? जितने सौखे ढंग नाल ए गल राजे निर्मम दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास एक इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले, नहीं अजीत सिंह नू तैयार कीता है। और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है, ऐ मेरे बच्चे एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर, अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? नहीं तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता ताबेदार। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं पूरी गल सुन, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा, स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नू देखदे ने शुक्र करदे ने परमात्मा दा ईश्वर दा अकाल पुरख दा असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना ताज दा मो ना तहत दा मो ना परिवार दा मो ना संसार दा मो, केवल प्रेम अकाल पुरख दा,
प्रभु चिंतन दे नाल उसकी याद दे नाल मोह प्रेम बन जाता है और प्रेम ईश्वर का रूप है। जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग। पर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रेम दी मूर्ति और आपका मूल फरमान साच कहो सुन ले हो सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। मोह सीमित है प्रेम असीम है। संसार दी सीमा है मोह ग्रसे दी भी सीमा है। निरंकार असीम है प्रेमी असीम है। जैसे कोई त्रह त्रह प्रभु दी शरण विच जांदा है आसरा पकड़दा है अरजोई करता है अरदास करता है और उसकी याद विच डुबदा है मोह प्रेम बन जाता है। फिर कुछ भी चला जाए कुछ भी आ गया ना हरक ना सोग प्रेम ही प्रेम प्रेम ही प्रेम।

मित्रंतजंत सतरंद्रनंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम भ्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगणे

हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है ए अहं भाव रहंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है चलदा रहंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान होमें एहा जात है होमें कर्म कमाए होमें एही बंदना फिर जौनी पाए। होमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण। इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक वक जीवां देच अपने अपने दोष पाए जांदे ने जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्ट रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस की ना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने ए रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसदा अहंकार किधरे इस जीवन दा अहंकार किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित हुंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा हुंदा है और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में अहनिस रहे
दीवाना दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे। जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे। सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे। दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दीरग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त। जिस दी महफिल देच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा मैं वड्डा मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है।
भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी। कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। एक गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आंदा, उसनों इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। इक अद नू न किसी प्रकार दी विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है। और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े, तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू हड्डियां दा माण,
जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण। इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें ही तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तू धन कठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इस दा अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाईदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलदा है, जगत तो मान मिलदा है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखण दे च आया है, धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता

ऐसी भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जाता है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंहासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने। अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उस दे सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावां, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण दा कारण बन जांदी है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नूं मिटा के प्रभु दा रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जांदी है, ईश्वर दा रूप हो जांदा है मनुख। भगत कबीर कहंदे ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। तू है तू है तू है, इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान दा रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच, जिस दियां सारियां क्रियावां देच भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं।

तपते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंह ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला दई है ना। अहंकारी ना करदा है, सबनू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रंग तजंत सतरंग दृणंत अनेक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्थार होंदा है, इसके दुश्मन ही वधदे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे, सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसती है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता
ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚਵੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਯੁਗਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਸ
ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख, हर्क सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवे कस्बे दे अंदर दाखल होंदे ने, सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जद इस कस्बे दे आउंदा सी सारियां दिया निगाह मेरे ते, अज ए निगाह फिर गई ने, अज ते मेरे मित्र ते। चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है, हैं इते मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेख देने। खैर जिस घर दे जाना सी गए, आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछे उस बैरागी साधु तो, ए जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस बिस्माद अखां दे इच है, तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने, पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुखत होके कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जद उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दे। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते, अखां दे चरमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालियां ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने, और साधु ने, तपस्या कर देने ज्ञानी ने। रह गई इस चोले दी गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई बिठाए गए, पर वो चोला
तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। स्वभाविक पूछ लिया संत जी ए नाल कौन आए ने ए केड़े संत ने तो हुण तारुफ करांदा है मेरे बाल सखा मित्र ने जपीश्वर ने तपीश्वर ने ज्ञानी पुरुष ने पर रह गई इना कपड़ियां दी गल इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करनी ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए कुटिया च पहुंचे इस मेहमान साधु ने इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है एले अपना चोला हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना तीन दफा तू उतरवाया है तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र दा भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु दी महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नु छुपाएगा मां बाप गुणवान ने ते उनां नु पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है उसनु भी हंकारी छुपाण दी कोशिश करेगा पिछे सुटेगा। महाराज दी बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी बड़े बुरे पुरुष आउंदे ने हंकारी गुरु नु भी छुपांदे ने क्यों फिर मेरी मैं मेरा वडपना फिर किथे। तो मित्र नु छुपांदे ने पुत्र नु छुपांदे ने अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने सिर्फ अपने आप नु ही अग्गे करना इना दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है रब नु भी पिछे सुटीए परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश की थी सी नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकदा। अहंकार जीवदा है मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है बकरे दे बोल नु अग्गे करके ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं इसे नु आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर बकरे ने किया

उस आंत देचो सोटे दी जरब नाल निकल रहे है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही कोई इतनी कुर्बानी करे साधना करे ते साधना विच लीन मनुखां दी कदमां नू खाक ते अपने मस्तक नू रगड़े श्वास श्वास वाहिगुरु वाहिगुरु जपे ताई ये मैं तों देच बदल दिए जीवन धन धन हो जांदा है महान हो जांदा है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा निंदा दूसरे दी करेगा। अगर दूसरा वड्डा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा। अहंकारी निंदक हो ही जाएगा। उते प्रसन्न होंदा है अपनी उपमा सुन के उपमा होण लग पई है दूजियां दी तीसरे दी मित्र दी तो हुण इस कोल होंदी है निंदा। निंदा दा मतलब की है गल नूं छुटियाना और अक्सर मनुख उसे दी ही निंदा करदा है जो किसे गल देच उस नालों अग्गे होवे गुण देच कला देच ज्ञान देच शील संजम देच या फिर प्रभु दी बंदगी देच या संसारी तल ते ले लो सता देच धन देच स्वप्न देच किसे भी पख तो जो अग्गे है अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नो सच नहीं कहेगा। अहंकारी निंदा करेगा और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटियाण की कोशिश करता है घटाण की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी उन्हां दी तपस्या इतनी इतनी परमात्मा उन्हां दे सन्मुख होया है प्रभु सामने होया है लेकिन हंकारी ब्राह्मणा ने मार मार के मंदिर चो कढ़िया है और मंदिर दे पिछवाड़े बिठा देता है। मारे है कड़े है ये बेचारा मंदिर दे पीछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति दे सन्मुख सी मूर्ति नामदेव दे सन्मुख सी पर हुण पीछे। पातशाह दी बाणी कहंदी है अहंकारियां निंदकां पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी दी तरफ परमात्मा दी हमेशा पिट होंदी है। जो गुणा दी सिफतों सलाह करदा है वो ते परमात्मा दी सिफतों सलाह करदा है। गुण किसे मनुख देच भी प्रगट होए ने तो गुण ते सारे परमात्मा दे ने। गुणा दी तारीफ परमात्मा दी तारीफ है पर वो ते निंदा करदा है गुणा दी निंदा करदा है क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा दी पिठ हो जांदी उसकी तरफ। और जिस मनुख दी तरफ परमात्मा दी पिठ हो गई है सब दी पिठ हो जांदी है। और अहंकारी बहुत दुखां दे दलदल दे जाके फसदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज फरमान करदे ने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे ऐ अहंकार तेरे करके ए जीव जमदे ने मरदे ने आउंदे ने जांदे ने दुख भोगदे ने सुख भोगदे ने थक जांदे ने टुट जांदे ने। ऐ अहंकार तू ते तोड़ के रख देना कईयां नूं

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते ने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जे किधरे अंदरों निकले तू इतनी औषधि हो गई। मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जो न साके सच का पंथा थाट्यो। सतगुर दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोह ना साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल विच फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूट समूड़े कवन गुने। ए मूर्ख किमें छुटेगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे है जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नू तड़प रहे है, रात नू तड़प रहे है, जो कुछ कर रहे है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहे है मजबूरी ही मजबूरी। समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नू तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तीन धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड विच, एक शब्द होया सी, फिर धुंद बनी, पानी बनया, ठोस जीवन बनया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया, जिसनू मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो आउर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख, सदीवी विश्राम, ओह ते मंजिल ते लभना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नूं बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नूं नापिए, तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जिही जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नूं समां चाहीदा है, अस्थान चाहीदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनूं कहिंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नूं किस तरह नापीए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघे उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां। जो समा आण वाला है ओदी चिंता मैनूं जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापदे ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सेकंड एक दम, इन एक दम जो मुंह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंग है, उते वर्त लै उते खर्च हो गया। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है वही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहे शरान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना की थी, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखे शरान बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एक दम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एक दम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आने वाले दमा दी चिंता। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं, वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सेकंड, एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए,
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجڑیاں منو مچندڑیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہونے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی انہاں دا فرمان، ورتمان وچ ورت دا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچھا اٹھ گیا، یہ سنسار تو اچھا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا، دو مٹ گیا، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منک یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں، بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبوئی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دچ تے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دچ تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے، وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال تے بھوش ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منک نو فسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوب چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے. دستے سہی کیوں چھٹیں گا اس جال تو،
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਡੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੋ ਨਾ ਸਾਕੇ ਸੱਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਫਾਟਿਓ। ਸੱਚ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਛਣ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਏ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮ ਝੂਠ ਨੇ।

नेदी दुनिया च अजे काल छोटा जरूर हो गया है, समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है बादशाह, सौ कदम तक चला, अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मर्दाने नू भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है, पातशाह मर्दाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं ते इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम पुट सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नूं, पातशाह तुहानूं किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, तुहानूं किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने, हम आदमी हां इकदमी, मोहलत मौत न जाना। इकदम जो मुंह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिस डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिस डिग गया, मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होने लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दिया यादां असीम आवन, सच नु प्रगट होने लई थां नहीं मिलती। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है, सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है, अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहिंदे ने, सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने, ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक, विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिव जी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे। अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया है अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखे

दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाइए पार। ई जो नतरे जान वाला सागर है दुस्तर है बड़ा, किवें पार जाइए, डोबदा महाराज कहते हैं। मैं तो देखदा मनुख डुबे पैने कोई परिवार विच ऐसा गर्क है निरंकार भुल गया, कोई लोभ वासना करके धन संपदा विच इतना डुबे है परमात्मा नु भुल गया, कोई हंकार वासना करके प्रभता च चौधर पणे च इतना डुबे है प्रभु नु भुल गया। यही कुछ तुसी देखोगे, डुबे हुए मनुख, गर्क हुए मनुख, कोई पदार्थां च डुबे पे, कोई परिवार विच डुबे पे, कोई प्रभता च डुबे पे, हम दे खांत हैं डुबे हैं। ये योगी चरपटनाथ जो ग्रस्त नु छोड़ के आया है, पदार्थां नु छोड़ के आया है, जोगी बने है, महाराज नु कहिंदा है सागर नहीं तरिया जांदा, कठिन है, औख है। दुनिया सागर दोतर कहिए क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधो नानक देव सदा सचा बिचारो। ए अवधूत नानक जी, ए महात्मा नानक जी, दसो पार किवें जाइए। तो इत्थे ते जोगी ने कबूल कर लिया, उरारा जे मैं नहीं पार होया, कबूल कर लिया, क्यों कर पाइए पार, किवें पार होइए। सतगुरु नानक देव जी महाराज दी विनम्रता निर्माणता मिठास आप कहिंदे ने, आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पार गरामी तिसक्या बैसन दीजे। तू जो कुछ पुछदा पे है जानदा है, उनु मैं की समझावां ते की जवाब दिया। साच कहो तुम पार गरामी, तू ते योगी है पार ग्रामी, पार पहुंच गया, तेरा ग्राम तेरा वसेबा ते पार। एक नो कहने न पार ग्रामी, संसार तो पार हो गया पार वसदा है। एक नो कहने न पार दर्शी, निगाहां पार वेख दिया ने, जाना है, कदम उरार खड़े ने, नजरां ललचा रही ने पार जाना है, नजरां बेताब ने जो कुछ देख दे पया, जिथे मेरी निगाह पहुंची है उथे मेरे कदम भी पहुंचन, मेरा हाथ भी पहुंचे। इस तरह दे मनुख नूं कहिंदे ने पारदर्शी। पर जिहदियां नजरां भी पार नहीं जांदियां, खड़ा उरार है ते कहिंदा उरार बड़ियां मौजां ने, यही सब कुछ। इहनूं संसारी कहिंदे ने, पारदर्शी नूं अभ्यासी कहिंदे ने, पारग्रामी नूं संत कहिंदे ने। पारग्रामी पार पहुंच गए, पारदर्शी इहदियां नजरां पार तक वेखदियां ने, इहनूं समझ है, इहदियां निगाहां पहुंचियां ने उस अवस्था तक जिहनूं हासिल करना है, उहदी समझ आ गई, साधना कर रहे अभ्यासी है, पारदर्शी है, पारग्रामी है। तीसरा संसारी उरार खड़ा है, ना नजरां पार वेख दिया ने ते ना ही पार जान दी तमन्ना है। ए जग मिठा अगला किंडिठा, छड़ो पार ले लो की रखे है। उरार वासना दा जगत है, उरार कामना दा जगत है, पार जान दी ते हुण तमन्ना ही नहीं रही, इच्छा ही नहीं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इस युग दा सिरमोर औगण काम वासना, पिछले जुग लंगे ने जिन्हां दे कुछ सिरमोर औगण सन किधरे अहंकार वासना।

ना किधरे लोभ वासना। इदा ये मतलब नहीं कि इक्को ही वासना प्रधान है, नहीं सारिया ने, लेकिन प्रधान इक्को है, बाकी जेर साया है। मैं पहले अर्ज की है, हर मनुख का बुनियादी अवगुण एक आंदा है, बाकी अवगुण भी होंदे ने, ओदे जेर साया होंदे। हर युग का अपना अवगुण होंदा है, एक अवगुण प्रधान होंदा है, बाकी जेर साया होंदे ने। इस युग का प्रधान अवगुण महाराज दसदे ने काम वासना, कल कल वाली काम मद मनवा पेवन हार। कामना सर्कल दे घूमती है, चक्कर दे दायरे दे। प्रथम काम वासना, रूप वासना, फिर पुत्र दी वासना, मित्र दी वासना, धन दी वासना, पदार्थां दी वासना, होर छोटिया छोटिया वासना, चंगे रहन सहन दी वासना, खाण पीण दी वासना, फिर वासना आके केंद्रित हो जाती है रूप ते। यही कारण है कि गुरबाणी और साढ़े देश दे सारे साधु जन पुरुष नूं जिथे काम कह देंदे ने, गुस्ताखी माफ, स्त्री नूं काम नहीं कह देंदे। काम नहीं, कामना दी मणी, मनुख दी कामना वक्ती तौर ते जिथे रुकदी है। छले कनक काम नहीं, गुरु अर्जन देव जी, छले मनुख छलिया जांदा है, कनक काम नहीं। किधरे लोभ करके, धन करके, कनक सोने करके, किधरे रूप करके छले आ जाते, किथे परमात्मा चेते आंदा। सार किताबली दा करता कहिंदा, कनक कनक ते अधिकता, कनक कनक ते बहु गुणा, सत गुणा अधिकाए, वा खाए बौरात है, वा पाए बौराए। कनक कहिंदे ने सोने नूं, कनक कहिंदे ने भंग नूं। कहिंदा है एक सोना कनक, एक भंग कनक, दोहां नूं कनक कहिंदे ने। भंग कनक इह ते खाइए पीए ते नशा चढ़ जांदा है, बंदा पागल हो जांदा है। कहिंदे एक नूं खांदिआं बंदा पागल हो जांदा है, एक ते सिर्फ हत्थां च आ जाए ते बंदा पागल हो जांदा है। वा खाए बौरात है, भंग खा ली ते पागल हो गया। वा पाए बौरात, धन सिर्फ हत्थां च आ गया तो पागल हो गया, तवाजन खो बैठा, हत्थां च ही आ गया, बस हत्थां च आंदियां ही डुब गया। वा खाए बौरात है या पाए बौरा है। तुलसी कहिंदे ने, ऐसो को जन्मयो जग माई, प्रभता पाए जासमत, चौधरपणा मिल गया धन करके या शक्ति करके, ऐसा केड़ा मनुख है जो प्रबल अहंकारी ना हो जाए और गर्क ना हो जाए, डूब ना जाए। ऐसो को जन्मे हो जग माई, प्रभता पाए जा समद नाए। तो काम ए वासना सिरमौर इस युग दे, अजोका साहित्य, अजोका लिटरेचर जो बाजार विच बिक रहा है, 90% कामक है। अजोकियां जो फिल्मां ने 100% कामक ने। गजब की गल, वेचना कपड़ा है, रूप स्त्री का अगों कीता हुआ है, वेचनी साइकिल है, खड़ी स्त्री कीती हुई है, जिवें साइकिल सिर्फ स्त्री ने चलानी है, पुरुषां ने चलानी ही नहीं। कपड़ा नहीं बिक रहा, साइकिल नहीं बिक रही, कार नहीं बिक रही, मूल रूप देखते स्त्री बिक रही है, स्त्रियां दे बाजार। मनुख दी वासना, हम कहियत कल युग के काम, ए वासना प्रधान। इस वास्ते ए भ्रष्टपना मनुख दी जिंदगी चारों पासे देखोगे। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, पुरुष दे चेहरे विच ते स्त्री दे चेहरे च प्रकृति ने फर्क रखे है। स्त्री नूं होर ढंग दा सौपण दिता है, पुरुष नूं होर ढंग दा सौपण दिता है।